श्रोता मित्रों, लोगों पर तीन एहसान कीजिए। फायदा नहीं कर सकते तो नुकसान भी ना करे, खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाए, और तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करे। आ पंक्तिओ कही जाए छे कि जीवन में आपणे कोई ने कशु आपी न शकीए तो छीनवानो प्रयास शा माटे करवो जोईए। बस आम चालता चालता बैठा बैठा विचारता विचारता कई ज करवा माटे नथी तो कोईक ने हैरान ने परेशान शा माटे करवो जोईए। जीवन छे जीववा माटे, सुख ने साहिबी मेळवी छे तो कोईना सुख ने साहिबी तो न छीनवा जोईए। आ सुंदर विचार ने जीवन में चौक्कसथी उतारो। मस्त रहो, व्यस्त रहो ने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज।

0: बुद्धि करता सूक्ष्म, बुद्धि करता उपर, बुद्धि करता प्रबल एवा आत्म तत्व ने जाणवुं, एने ओळखवुं, अने ओळखवा माटे बुद्धे हे परम हूँ ए आ तत्व ने आत्मानं आत्मना बुद्ध्वा हे आत्मा ने पोते पोताना वडे ओळखी लईने जही शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। जो तमे तमारी जात आ बुद्धि करता तमारू आत्मा तमारो आत्मा आ बुद्धि करता पर छे एटलू जाणी लो अने बुद्धि ने पण ओळखी लो अने आत्मा ने पण ओळखी लो तो पछी पेलो कामरूपी जो शत्रु छे ए कामरूपी शत्रु आप मेळे नाश पामवानो छे। जही शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम। आ कामरूपी जे शत्रु छे, जे दुष्ट शत्रु छे, एने आ साचा ज्ञान वडे जही मारी नाख। एटले मूळ वात जे वारंवार कहेवाई छे ने कहेवावानी छे ते आज छे के कामनाओ कामयुक्त कर्मो सकाम कर्मो एना माथी मुक्त थता शीखवू जोईए अने आना माथी मुक्त थाय एज मोक्ष छे। मोक्षनुं स्वरूप बीजू शोधवा जवानी जरूर नथी। आजे आपणे जे गीता विषयनुं गीता ने समझवा विषयनुं गीतामृतनुं रसपान करवानो जे प्रयत्न कर्यो छे ए प्रयत्न अपना माटे रसात्मक रह्यो हशे एवी हुं अपेक्षा राखुं अने આગળનું વિચારણા કરવા માટે આપણે હવે પછીની શૃંખલામાં સાથે મળીએ અને ફરી પાછું આગળ અધ્યયન કરીએ। અસ્તુ।
1: રેડિયો બાલનપુર 90.4 FM કોમ્યુનિટી રેડિયો સ્ટેશન પર આમ આપણે માનતા રહીશું ગીતા અમૃત, સિમ્પલ અને સરળ ભાષામાં ગીતાનું રસપાન। આપને આ કાર્યક્રમ કેવો લાગ્યો એ અચૂકપણે અમારા ફેસબુક પેજ 90.4 FM રેડિયો બાલનપુર પર પ્રતિભાવ આપવાનું ચૂકતા નહીં। આવી જ રીતે મળતા રહીશું। તમે સાંભળતા રહો 90.4 FM રેડિયો બાલનપુર।

लांबो डगलो मुछो बांकड़ी सिरे पाघड़ी राती अरे लांबो डगलो मुछो बांकड़ी सिरे पाघड़ी राती अरे बोल बोल तो थोड़ी थोड़ी खेल सभी लोग गुजराती अरे तन छोटू पर मन मोटू अरे तन छोटू पर मन मोटू छे खमीर बनती जाती अरे भले लाग तो घोड़ो तू खेल।

सौम्य तेजस्विनी पुस्तक डॉक्टर गिरीश भाई ठाकर द्वारा लिखित सोमनाथ की पृष्ठभूमि में ज्या वार्ताओ ए ऐतिहासिक घटनाओं स्वरूपे समायेली छे तेने दर्शावे छे अने तेना अंशो थकी हूँ आरजे एआर रेडियो पालनपुर पर थी तमने संभळावी रह्यो छुं आ पुस्तकना वाचिकमने याज्ञ वल्क्य प्रथम प्रकरण ब्रह्मतेज थी जेनु ललाट प्रकाशमान छे मस्तक मां रहेल ज्ञान नो प्रकाश अंगे अंगथी प्रस्फुटित थई रह्यो छे माथे काली भम्मर जटा जाने गंगाजी ने पोतानामां समावी लेवा सिद्ध होय एवा भगवान शंकर नी जटा फक्त चंद्रबिंब रहित शोभी रही छे जेनो शब्दे शब्द मंत्र बनी जाए एवो ब्रह्म वर्चस्व नक्षीक अंगो मांथी प्रकट थई रह्यो छे अने एवा ज्ञानोपासक तपस्वी युवान गुरुश्री शाकल्यना आश्रममां विद्योपासनामां तन्मय छे अने एक दिवसे मंगल प्रभाते गुरुनो आदेश संभळाय छे याज्ञवल्क्य आजे तारे मंत्राक्षत पुष्पांजलि वगैरे लईने राजप्रसाद जवानुं छे केम गुरुजी कई विशेष छे अरे वत्स तू नथी जाणतो आपणा राजाजी दररोज प्रभाते आपणा एक शिष्यने आमंत्रे छे राजाजी गुणग्राही ज्ञान पिपासू लागे छे ना वत्स साव एम तो नथी पण जी गुरुजी पण शो पण आपणो ज्ञानी शिष्य प्रभाते राजाने आशीर्वाद आपवा जाय अने तेना आशीर्वादना प्रभावथी राजानो प्रताप राजानो वैभव राजानो ऐश्वर्य वधु उज्ज्वल बने एमज ने हा वत्स तू बरोबर समझी गयो हा गुरुजी पण मने खेद पण थयो छे राजा ज्ञानोपासक नथी प्रभावोपासक छे वत्स अहीं विवादने अवकाशित नथी मारे दररोज एक तेजस्वी शिष्य राजा ने आशीर्वाद जल अक्षत पुष्प लेने मोकलवो एवु निर्धारित थयेल छे गुरुजी अविवेक क्षम्य गणशो पण आ कार्य माटे हूँ केम पसंदगी पाम्यो કેમ પસંદગી પામ્યો આ સવાલનો જવાબ આપણે માણીશું અવિરામ બાદ ત્યાં સુધી મસ્ત રહો વ્યસ્ત રહો અને સાંભળતા રહો રેડિયો પાલનપુર

FM, रेडियो बालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवड़ी मंडल संचालित आ रेडियो स्टेशन पर तमारा प्रतिभाओ तमारा संदेशाओ अने तमारी वातों ने मोकली आपवा माटे तमे 90.4 FM रेडियो बालनपुर ना फेसबुक पेज पर जई शको छो अने तमारी वात ने त्यां पोस्ट करी शको छो साथे साथे तमे अमने व्हाट्सएप पण करी शको छो रेडियो बालनपुर पर तमारी वात ने पहोंचाड़वा माटे व्हाट्सएप नंबर 95129599668 ફરી એકવાર નંબર હું તમને જણાવું છું 95129599668 પર તમારા સંદેશાઓ અને પ્રતિભાવો મોકલી આપો પાલનપુરનો એકમાત્ર અવાજ એટલે કે રેડિયો પાલનપુર મસ્ત રહો વ્યસ્ત રહો સાંભળતા રહો 90.4 FM રેડિયો પાલનપુર

शहर अवाज एटले 90.4 FM रेडियो पालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडळ संचालित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आ शहर नी पोतानी ओळख आ शहर नी पोतानु टॅलेंट युवाओ माटे जागरूकता आणि विज्ञान ना प्रचार प्रसार ना तमाम कार्यक्रम साथे समुदाय नी तमाम आवाज ने वाचा आपतु एकमात्र प्लेटफॉर्म एटले 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो पालनपुर सांभळता रहो मस्त रहो खुश रहो 90.4 FM।

0: आपली भाषेचे सुंदर म्हणजे आणि कविता गजल कि शेर शायरी
1: अथवा तो तुम्हें कई लगता हो साहित्य साहित्य में वार्ताओ तो ये रजू करवा माटे तुमने प्लेटफॉर्म जोये छे तो ये प्लेटफॉर्म अमे आपीशु
0: रेडियो पालनपुर पर जो तमारा में सिंगिंग टैलेंट छे कि पछी कोई पण वाद्य ने तमे वगाड़ी जानो छो तो आप सब माटे पण प्लेटफॉर्म छे
1: रेडियो पालनपुर तमे सारू लखो छो तमने मोकलावी शको छो अथवा तो रूबरू अहीं आवीने रिकॉर्ड पण करी शको छो परंतु हाँ एनी जानकारी अमने पहेलाथी आपवी पड़शे अमारा रेडियो पालनपुर ना व्हाट्सएप नंबर पर 9592968888 पर
0: आपनो आवाज अपना सब सुधी पहुंचाड़वानु काम करशे रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज मस्त रहो व्यस्त रहो सांभळता रहो
1: रेडियो

शहर अवाज एकली 90.4 FM रेडियो पालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडल संचालित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आ शहर नी पोतानी ओळख आ शहर नी पोतानु टैलेंट युवाओ माटे जागरूकता अने विज्ञान ना प्रचार प्रसार ना तमाम कार्यक्रम साथे समुदाय नी तमाम अवाज ने वाचा आपतु एकमात्र प्लेटफॉर्म एटले 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो पालनपुर सांभळता रहो मस्त रहो खुश रहो 90.4 FM।

0: पालनपुर।
1: कार आप सुन रहे हैं अंताक्षरी सीजन 2 आरजे प्रियंका के साथ रेडियो पालनपुर 90.4 पर। हमारे साथ जुड़े, साथ गाएं और अपने पसंदीदा गानों के रिदम को फील करें, सिर्फ यहीं, सिर्फ हमारे साथ बने रहें और म्यूजिक को टेक ओवर करने दें।
2: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
3: નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો, હું છું આરજે પ્રિયંકા અને તમારી